वापस आ गया स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न 88.9 विन एफएम ते। उम्मीद करदे हां कि तुसी सारे ठीक होवोंगे। जानदे हां कि मेलबर्न दा वैदर इस हफ्ते किवें दा रहेगा ते तुहानूं किवें दीआं प्रैपरेशन्स पूरे वीक करन दी जरूरत है। मेलबर्न दा वैदर जिहड़ा जिद्दां अज असी देख रहे हां सोमवार 28th of September नूं सानू धुप्प देखण नूं मिल रही आ, पर थोड़े टाइम तक बदल होण दी भी संभावना है। अज दे दिन दा टैंपरेचर वध तों वध 17 डिग्री ते घट तों घट 10 डिग्री सैलसीयस रहेगा। ट्यूजडे 29th of September नूं जिहड़ा मौसम आ उह काफ़ी गर्म होण वाला आ, टैंपरेचर अराउंड 24 तक पहुँच सकता है। हवावां भी चलणियां ते विचकार बदल भी हो सकते ने। बुधवार 30 September का दिन है जिहड़ा उहदा टैंपरेचर अराउंड 22 डिग्री सैलसीयस रहेगा। दिन विच बदलवाई ते हवादार हवा दे चलन की संभावना बनी रहेगी ते हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। वीरवार 1 October नूं सवेर वेले कुछ मीह एक्सपैक्ट किया जा सकता है, पर बाद विच धुप्प ते बदलों का मिलिया जुलिया मेल जोल रहेगा ते टैंपरेचर है जिहड़ा वह अराउंड 22 डिग्री सैलसीयस रहेगा। शुक्रवार 2 October नूं जिहड़ा मौसम आ वह दोबारा तो ठंडा होने की पॉसिबिलिटी है। जिहड़ा दिन का टैंपरेचर आ वह अराउंड 17 डिग्री रहेगा, पर रात का टैंपरेचर 8 डिग्री सैलसीयस तक जा सकता है। सैटरडे 3 October नूं भी ठंड ते हवावां दा असर बनिया रहेगा, टैंपरेचर अराउंड 17 डिग्री सैलसीयस ते घट तो घट 9 डिग्री सैलसीयस रहन दी पॉसिबिलिटी है। ऐतवार 4 October नूं मौसम फिर तो कुछ गर्म हो जाएगा, बदलों तो बाद धुप्प निकल सकती है ते टैंपरेचर अराउंड 23 डिग्री सैलसीयस हो सकता है। ये सीगा मेलबर्न दे पूरे हफ्ते दा वैदर। तुसी जे किते बाहर जाना अपने वीक नूं प्लान करना या वीकेंड ते कुछ प्लान करना या ते तुसी वैदर दे अकॉर्डिंग कर सकते हो। पूरे हफ्ते दा जिहड़ा वैदर आ उह पूरा मिलिया जुलिया रहेगा, जिथे सानूं हवावां बदल ते धुप्प तिन्नों ही रल मिल के बारी बारी दिखदे रहणगे। उम्मीद करदे हां कि तुसी इस वैदर दे अकॉर्डिंग अपना वीक प्लान करो। सुणदे इक गाना, फिर करांगे कुछ होर गल्लां बातां तुहाडे नाल ते जुड़े रहो सांझी आवाज़ रेडियो दे प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न 88.9 विन एफएम ते।